0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

अमेरिका ईरान छिकताण में तेजी, अमेरिका जा 12 डी ते हमला जारी। खोजिस्तान सूबे में मुसाफिर टर्मिनल ते हमले में 2 जणा मारजी वया। सीरक बोशे रहवार ते भी हमला, अमेरिकी फौज जो चवण है त सदर ट्रम्प की हिदायत ते ईरान ते हमलन जे नओ सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे। ईरान जा भी जवाबी वार, आपने हरमुज में ईरान जो अमेरिकी टैंकर ते हमलो, टैंकर के बाहि लगी वही। पासदार इनकलाब जो चवण है तो ओमान जे समुंड वेझो अमेरिका जे 3 टैंकर आपने हरमुज मां गुजरण की कोशिश कई, एक टैंकर के बाहि लगी वही, 2 वापस हलिया वया। ईरान सां राब्तो करण खां सवाइ को भी टैंकर आबना हरमुज मां न गुजरी सघंदो। कुवैत में भी अमेरिकी अड्डे ते हमलो। यमनी हुसैन जो सऊदी अरब जे 2 ऑयल टैंकर्स के निशानो बणाइण जी दावा। यमनी हुसैन जो चवण आहे त बहरी नाकाबंदी जी भनकड़े ते ऑयल टैंकर्स के निशानो बणायो वियो। हुसैन सऊदी अरब खिलाफ़ सूमर ते बहरी नाकाबंदी जो ऐलान कयो हो। सऊदी क़यादत ऐं इतिहादी नाकाबंदी जो भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान कयो हो। बहरी मुफादन के निशानो बणायो वियो त दिफ़ा जा समूरा हक़ इस्तेमाल कया वेंदा। पाकिस्तान यमनी हुसैन के ख़बरदार करे छॾियो। रेड सी में सऊदी अरब जे बहरी नाकाबंदी वारनि धमकियुनि जी बि मज़म्मत। विच ओभर में चिकताण ते सऊदी अरब के भी शामिल करण वारनि कोशिशनि ते भी गणती ज़ाहिर। सऊदी अरब जे सलामती खुदमुख्तियारी वारे अज़म जो वर्जाओ। परडे॒ही खाते चयो आहे त पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़नि तोड़े बहरी मुफादनि ख़िलाफ़ क़दमनि खे पाकिस्तान जे क़ौमी सलामती ऐं ख़ुदमुख्तियारी

0: हिकु वण सिंध अमर जे नाओ केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻु ई वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सा जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आ

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
2: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
2: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
3: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल कीअं कजे?
3: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼी वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check.

टेवीह जुलाई लाया आहिनि जेके हींअर खां लागू हूंदा। वफ़ाक़ी हुकूमत ते लगनि में रोज़ाने जी बुनियाद ते फेरफार ख़िलाफ़ एहतजाज कंदड़ पेट्रोल पंप मालिकनि खे मार्जन वधाइण जो आसिरो ॾेई हड़ताल जो सर वापसि वटाए छॾियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अली परवेज़ मलिक पेट्रोल पंप ओनर्स ऐं डीलर्स एसोसिएशन जे अॻवाणनि सां ॻाल्हियूं करे संदनि मसला ॿिनि हफ़्तनि में हल कराइण जी ख़ातिरी कराई। हुकूमती ख़ातिरियुनि ते पेट्रोल पंप मालिकनि गुज़िरियल रात 12 वॻे खां ऐलानियल हड़ताल जो सॾु वापसि वठी छॾियो। अली परवेज़ मलिक चयो आहे त रोज़ाने जी बुनियाद ते क़ीमतनि में फेरफार बाबति ॿिनि हफ़्तनि खां पोइ पेट्रोलियम तनज़ीमनि सां गॾिजाणी थींदी। आलमी सतह ते तेल जा अघ घटि वधि थी रहिया आहिनि। जल्द शफ़ाफ़ अंदाज़ में इन फार्मूले तहत फ़ाइदो अवाम खे वापसि मुंतक़िल कयो वेंदो। आबनार मुज़ में कंहिं बि जहाज ते हमिलो थियो त ईरान जूं पुलूं ऐं बिजली घर तबाह करे छॾींदासीं। अमेरिकी सदर ट्रम्प जे हिकु भेरो ॿीहर धमकी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सदर ट्रम्प जो चवण आहे त ईरान मुआहिदे लाइ तयारु नाहे पर जल्द तयारु थी वेंदो। असांखे आबनार मुज़ जी ज़रूरत नाहे। ईरान खे एटमी हथियार रखण न ॾींदासीं। आबनार मुज़ में जहाज़नि ते हमिलो थियो त ईरान जूं पुलूं ऐं बिजली घर तबाह करे छॾींदासीं। मदे जीवे जो नौजवान बेदर्दीअ सां क़तल। ॻोठ सालार ज़खरो पारां पीर साबिर शाह वटि ॻोठ धड़े जाकरे वासी नौजवान ओशाक पुट अब्दुल रज़ाक ज़खरो जो गोलियूं लॻल लाश हथ। पुलिस जो चवण आहे त लाश इस्पताल मुंतकिल कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। हिकु वण सिंध अमर जे नाओ। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मौत। सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻी वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और मुफीद है।
3: फकीरी
2: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, सिंध जो आवाज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:15 AM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niyajosho. A product by Biocon International Pakistan.

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: प्यासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम पर
0: फकीरी
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जफुस फराम करने और गर्मने वाली घुमरियों और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम पिकली हीट सॉप।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह जी FM 88 नेटवर्क
3: जो आवाज़ गीत 1.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।
2: This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account, Bharosa Bhi, Raftar Bhi, Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News।

गिरफ्तार कयल केटीएन न्यूज सखर जे रिपोर्टर साहिल जोगी समेत केतराई कारकुन गुम। गुजरियल रात बबरलोई बाईपास ते प्रिया कुमारी ए बेन मुगवी बारन जी बाजाबी लाए दह धरणो हणी वेठलन ते पुलिस लठबाजी करे औरतन ए बारन सूदो केतरन ई बारन के जख्मी करे विधो। सिंध मागवा ए गुम थियल पंजवीह खां वधीक बारन जी बाजाबी लाए बबरलोई बाईपास वट कौमी शाहरा ते प्रिया एक्शन कमेटी जे सॾ ते धरणो हयो वियो। अगवाणनि जो चवण आहे त रात देर सां पुलिस ताक़त जो इस्तेमाल कंदे कड़की पई ऐं लठबाज़ी कई। अगवाणनि ऐं कारकुननि खे गीलींदे खंभे गुम कयो। असांजा पंजवीह खां टीह कारकुन गुम आहिनि।

बगरलो धरणे ते पुलिस जी कहा खिलाफ हैदराबाद में धरणो हणंदड़न के भी पुलिस गिरफ्तार करे वरतो। हैदराबाद में नेशनल हाईवे ते बबरलो धरणे में पुलिस की चढ़ाई खिलाफ नेशनल हाईवे ते धरणो हयो वयो। पुलिस अगवाणन के गिरफ्तार करे नसीम नगर थाने ते मुंतकिल कयो।

जी टूट प्लाजा भरसा ते छापो हयो। जवाबदारन जी फायरिंग में टे जवाबदार मारजी वया, एक पुलिस अहलकार जख्मी थियो। डॉक्टर आकाश कतल केस में नामजद जवाबदारन सुरेश रामचंद अनिल के जाम शोरे मां गिरफ्तार कयो वयो हो। डॉक्टर आकाश के कराची में तीन तलवार वारे इलाके में सुर मजहमत ते कतल कयो वयो हो।

अमेरिका ईरान ठिकाण में तेजी। अमेरिका जा ॿारहें ॾींहं ते हमला जारी। खोजिस्तान सूबे में मुसाफ़िर टर्मिनल ते हमले में ॿ ॼणा मारिजी विया। सीरकपो शहर अहवार ते बि हमला। अमेरिकी फ़ौज जो चवण आहे त सदर ट्रंप जी हिदायत ते ईरान ते हमलनि जो नओं सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे। ईरान जा बेजवाबी वार। आबन हरमुज़ में ईरान जो अमेरिकी टैंकर ते हमिलो। टैंकर खे बाहि लॻी वई। पासदार इंकलाब जो चवण आहे त ओमान जे समुंड वेझो अमेरिका जे टिन टैंकर्स आबन हरमुज़ मां गुज़रण जी कोशिश कई। हिकु टैंकर खे बाहि लॻी वई। ॿ वापसि हलिया विया। ईरान सां राब्तो करण खां सवाइ को बि टैंकर आबन हरमुज़ मां न गुज़री सघंदो। कुवैत में बि अमेरिकी अॾे ते हमिलो। जिमनी हुसैन जो सऊदी अरब जे ॿिनि ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दावा। जिमनी हुसैन जो चवण आहे त बहरी भंकड़ी ते ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणायो वियो। हुसैन सऊदी अरब ख़िलाफ़ सूमर ते बहरी नाकाबंदीअ जो ऐलान कयो हो। सऊदी क़यादत ऐं इतिहादी नाकाबंदीअ जो भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान कयो हो।

डेरा मुराद जमाली भरसा हथियार बंदनि फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। मुंहिंजो शोरो थाणे ॻोठ सूबा खान उमराणी में हथियार बंदनि घर में गिरी इरफान चांडियो खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। वधे जी वेझो नौजवान बेदर्गीअ सां क़तल, ॻोठ सालार जखरो साबिक शाह वटि ॻोठ दड़े जाकरे वासी नौजवान ओशाक पुट अब्दुल रज़ाक जखरो जो गोलियूं लॻल लाश हथ। पुलिस जो चवण आहे त लाश अस्पताल मुंतकिल कयो आहे, वधीक जांच करे रहिया आहियूं। ऐं हिकु वण सिंध अमर जे नाओ, केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे वण पोखण वारे सिंध खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾ ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻु ई वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: यारे ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छरिया है। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
3: तो पोई छा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
2: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंद ते जल्दी जज़ब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मा आराम पहुँचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे,
3: रुगो मुतासिर हंद ते डीह में टे का चार भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वठ। आई बुध जेकरे उमरे या हज ते वणण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
2: वाह, पोए अज ही वठींदस।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और इस गाने के साथ उस एंजॉय कर आगे चलते हैं स्टेज.

अवगी जी प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए और उसको सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा, दैट इज www.facebook.com/GFM88 के पेज के ऊपर लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग, नहीं सॉरी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं, पोस्ट आपको मिल जाएगी. पोस्ट के नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है. सो कमेंट्स को जितने भी लोग ऑलरेडी ड्रॉप कर रहे हैं वो हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग नहीं बल्कि पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे फेसबुक पर या फिर फेसबुक से बाहर, जहां जितना हो सके उतना, ठीक है. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए 03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे, गाना सुनेंगे, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
3: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद 91.6 सिंध जो आवाज।
1: दिल पेरन जो इलाज ऐं भगल हडन जो ऑपरेशन।
2: जी हमें मैसेज रिसीव हुआ है, ये कहती है हाय भाई ठीक हूँ आप कैसे हो, हियर कम्स द ब्यूटीफुल।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6। सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हराम तालीमुल कुरान पंचन मिंटन ते सिर्फ जीते।
4: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: जी एफ एम 88।

0: हैं, आप सुन रहे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ओके बताएं, गाना सुनाना है?
1: हाँ जी जी सुनाना है।
2: रहे वाले उदावत है कभी आओ सच, कभी आओ सच हम दे में रहने वाले।
0: ओके जल्दी से
1: हेमंत सावन ढिल्लू साहब और सरदत्त साहब और जो भी सुन रहे हैं जवान मोहन बतौर शमणी साहब जो भी सुन रहे हैं सबको आप।
0: ओके

0: ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेंगे और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: एसआरएच.
0: एसआरएच कैसे, ठीक ठाक?
1: बिल्कुल खैरियत से.
0: ओके, मुझे बताएं गाना सुनाएंगे.

0: जी
1: सुना दे।
0: हो सके तो मेरा
1: एक मिनट रुक जाएं। ये गाना 3 दिन से मुझे लगातार लिसनर सुना रहे हैं और मैं प्ले भी कर रही हूँ। इसको चेंज करें,
0: इसको ब्लॉक करें।
1: नहीं, ब्लॉक नहीं करें, इसको चेंज कर लें, कोई और गाना सुनाएं, कोई और अच्छा सा।
0: चलो अपनी पसंद से सुना दें कोई भी।
1: अपनी पसंद का नहीं सुना सकती ना, रूल ये है कि आप गाएंगे तो मैं।
0: चलो किसी और की चॉइस।
1: किसी और की चॉइस सुननी है
0: जी, जी।
1: और कुछ कहना है?
0: बस यही कहना।
1: ओके जी, लव यू। और यकीन करेंगे ये वाला गाना एक दो जो है उर्दू वर्जन में है वो, और दो जो सिंधी वर्जन में है वो मैं चारों प्ले कर चुकी हूँ। तो अब मुझे ख्याल आया कि इसको ना चेंज करना चाहिए, मतलब हर लिसनर आके ये वाला गाना गा रहा है, ज्यादा फेमस हो रहा है, मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट कॉल।

0: ये
1: प्रोग्राम है चलती का नाम मत
0: चल हेलो हेलो
1: जी हेलो।

ओके, बहुत सारा ख्याल रखो, मुस्कान अपना, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. और ये रहा गाना, और गाना हम प्ले कर रहे हैं साथ साथ आज का टंग ट्विस्टर भी बताएंगे. आज का टंग ट्विस्टर है कि चक्की में चक्का, चक्के में आटा, आटे में चक्की. ठीक है, ये कहना है चक्की में चक्का, चक्के में आटा, आटे में चक्की. ठीक है, समझ के सुनेंगे फिर बोल पाएंगे. तो इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें, क्योंकि 12 बजे के बाद हम करेंगे कान और फिरेंगे बोलो तो माने. एंजॉय करें मेरे साथ में. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की.

0: Abab Sunenge. GFM.
1: Har din har peher. Zindagi ki leher. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
2: It's 12 p.m. This transact is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: कि हमलन जो मकसद ईरान जे आपने हरमुज में बहरी जहाजन के हमलन की सलाह के घटाएं हो ईरान जार में अमेरिकी इंकलाब मौजूदा अमेरिकी दिफाई निजाम के तबाह कयो वयो आहे।

यमनी हुसैन जो सऊदी अरब जे बिन ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाने जी दावा। यमनी हुसैन जो चवण आए तो बहरी नाकाबंदी की भनकड़ी से सऊदी अरब जे ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाया वो। हुसैन सऊदी अरब खिलाफ सूमर से बहरी नाकाबंदी जो ऐलान कयो हो। मदे जी वेझो नौजवान बेदर्दी से कतल, गोठ सालार जखरो बहरा दड़े जाखरे वासी नौजवान ओशाक जखरो जो गोलियों लगल लाश मिलो जारी।

0: ऐं बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली भरिसां हथियारबंदनि फायरिंग करे हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। मुंहिंजो शोरो थाणे घोट सूबा खान लुमराणीअ में हथियारबंदनि घर में घिरी इरफान चांडो खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। पुलिस लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: यार कुछ

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: हुई है। वैसे तो बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, अब ये है कि चूंकि अब जुलाई की आमद है तो जुलाई में मुझे लगता है कि वो ऐसा मौसम होता है, थोड़ा सा हवा कम हो जाती है, हब ज्यादा हो जाता है, कुछ बारिशें होती हैं कुछ दिनों में, लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर राइज ही करता है।
0: ओके जी, ग्रेट। अच्छा एहतिसाम, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं?
1: कुछ दिनों पहले मैं बीजिंग से सफर मैंने किया था, सानिया का कहा भी था प्रोग्राम में एक कि हम कभी उस पर बात करेंगे कि मैंने जो कुछ वहां देखा वो कितना इम्पोर्टेंट है। इस वक्त हम हरा भरा पाकिस्तान के लिए जब बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि हमने आलूदगी से कैसे बचाना है, प्लांटेशन कैसे करनी है, या हम कहें कि हमें बिजली कैसे पैदा करनी है, जो क्लीन एनर्जी की हम बात करें, ये तमाम चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी है अगर हम उस पर बात करें तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये एक छोटा सा शहर बसाया गया शहर के अंदर सानिया में ही, और उसे कहा जाता है याजू बेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी। और इस शहर को बसाने का मकसद ये है कि चीन में जितनी भी तरक्की ज़राअत के हवाले से या समंदरी आबी हयात के हवाले से हो रही है, उस तरक्की को यकजा किया जाए और दुनिया भर से जो कोऑर्डिनेशन है, जो रिसर्चेस हैं, उनको देखा जाए, ताकि ये हो कि एक कंबाइंड एफर्ट हो चीन के लिए भी और दुनिया भर के लिए भी। तो ये एक ऐसा इसको छोटा सा अगर मैं शहर कहूं जिसको हम याजू बेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी कह रहे हैं, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि जिस दरवाजे से आप दाखिल हुए हैं ये इस पूरे शहर का है, और यहां के तकरीबन कोई एक से ज्यादा दरवाजों से जब आप खामोशी होगी और तहकीक की दौर और नजर आएगा जगह पर। शहर वैसे तो टूरिज्म के लिए है, लेकिन अब ये शहर रिसर्च और जी के हवाले तेजी से उभरता हुआ एक शहर बन रहा है, और इसी के मरकज में ये हम बात कर रहे हैं। ये एक जदीद तहकीकी मरकज है और इसकी समंदर है कि किसास है, और साथ ही फिर सरसब्ज माहौल भी हमें दिखाई दिया, और फिर जदीद इमारतें हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं और यूनिवर्सिटी के कैंपस, जिनको देखकर एक पूरे शहर का यकीनन आपको गुमान होता है। फिर ये एक मुकम्मल साइंसी माहौलियाती निजाम के तौर पर तश्कील दिया गया है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले पूरे चीन से जो साइंसदान हैं वो यहां आते हैं, रिसर्चर्स यहां आते हैं, स्टूडेंट्स यहां आते हैं, और साथ ही साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज या नेशनल बड़ी कंपनीज जो हैं उनके अफराद भी यहां आते हैं। सब साथ बैठते हैं, अपनी अपनी जरूरियात के हवाले से बात करते हैं, और फिर जो मंसूबे तख्लीक पाते हैं उनका मकसद यकीनन जदीद तहकीक को मईशत यानी चाइना की इकोनॉमी और उसकी सनत से जोड़ना होता है, और फिर नई ईजादात हमारे सामने आती हैं। एक खसूसियत यहां समंदरी तहकीक भी है, क्योंकि सानिया जो शहर है चीन का, ये जनूबी बहर चीन के करीब वाक़ है, इसलिए यहां ओशन साइंस के शोबे को खसूसी अहमियत दी गई है, और यहां जो कायम तहकीकी इदारे हैं वो समंदरी माहौलियात के हवाले से, आदी हयात के हवाले से, और जो डीप सी टेक्नोलॉजी होती है और डीप सी है उन पर तहकीक करते हैं, ताकि इस हवाले से भी मजबूत जो है वो बुनियाद हासिल की जा सके। इम्पॉर्टेंट चीज जो आम आदमी के सुनने की होगी, वैसे तो बहुत कुछ था इस टेक्नोलॉजी सेंटर में, लेकिन जो हमने देखा वो ये कि ये बताया गया कि चूंकि चीन ऐसा मुल्क नहीं था जहां हर तरह के जो चीन के पास नहीं थी, कुछ फल ऐसे थे जो चीन के पास नहीं थे, तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी सेंटर ने ये किया कि वहां से जो सीड इम्पोर्ट किए गए बाहर से उनकी, और उनकी रिसर्च के साथ साथ कि वो कैसे इस मिट्टी यानी चीन की मिट्टी के साथ कंबाइन होकर

एक बेहतर फसल दे सकते हैं, उस पर काम किया गया। और फिर साथ ही जो बीज मंगवाए गए उसका दूसरा मकसद ये था कि हम आइंदा बीज नहीं मंगवाएंगे बल्कि हम चीन में खुद ये बीज बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो कि जिस पर हम सब बड़े हैरान हुए। और फिर हमें बताया गया कि कई तरह की फसलों और फलों के ऐसे बीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और दीगर अफ्रीकन कंट्रीज से भी मंगवाए गए और फिर उनको यहां खुद पैदा किया गया। तो ये इस वक्त बीज की बनाने के हवाले ये एक बहुत वो है, यहां पे कहलाता है बीजों का। फसल कोई नई चीज इम्पोर्टेंट।

0: सिंध जो आवाज ॿुधंदा रहो।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
2: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जाओगी जी. वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. हमारा सेगमेंट बोलो तो माने, और बोलो तो माने में आप एक अगर टंग टेस्टर बोलेंगे और आज का जो टंग टेस्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप कह के दिखाएंगे चक्की में चक्का, चक्की में आटा, आटे में चक्की. ठीक है, ये कहना है. तो अब देखते हैं कि ये कौन कह पाता है 03000113488 के ऊपर. नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से
1: जी? विलेश.
0: कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं,
1: अल्लाह पाक के करम से. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आप सुनाइए.
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताएं टंग टेस्टर सुनाए बोलेंगे
1: जी. टंग टेस्टर बताइए.
0: बता दूँ?
1: बता दें.
0: अच्छा, आपने कहना है चक्की में चक्का, चक्की में आटा, आटे में चक्की.
1: चक्की में चक्का,
0: चक्की में आटा.
1: ये बहुत
0: बहुत मुश्किल है. ओके, कुछ और कहेंगे?
1: जी दोस्तों को सलाम देंगे. नूर संतोष भाई जो भी आपको सलाम, जो भी सुना सबको सलाम.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. 03000113488. मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो टंग टेस्टर बोलेंगे. ठीक है जी, तो नेक्स्ट कॉलर हम लेने जा रहे हैं. हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. आसिफ अली चाचर,
2: आप सुनाए वाली शेख हो?
0: आसिफ अली चाचर,
2: कैसे
0: हैं? ठीक ठाक है.
2: आपका शो जबरदस्त है.
0: ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको?
2: जी हाँ.
0: तो आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं मुझे?
2: नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ. आप सुनाए, आप कैसे?
0: अच्छा, मुझे बताएं कि टंग टेस्टर सुनाए बोलेंगे.
2: थोड़ा सा बताओ.
0: आपने कहना है चक्की में, नहीं सॉरी मेरा भी गलत हो गया. चक्की में चक्का, चक्की में आटा, आटे में चक्की.
2: चक्की में चक्का, आटा में
0: नहीं. चक्की में चक्का, चक्की में आटा, आटे में चक्की.
2: चक्की में चक्का, आटे में चक्की. चक्की में चक्का, आटे में चक्की. चक्की में चक्का, आटे में चक्की.
0: नहीं नहीं, गलत गलत गलत गलत गलत कह रहे हैं. आपसे नहीं हो पाएगा. और कुछ?
2: मुझे सॉन्ग सुनाओ.
0: ओके, सॉन्ग सुनाते हैं. थैंक यू, अल्लाह हाफिज. 03000113488. नेक्स्ट कॉलर लेंगे. कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी मूव करेंगे जो कि बहुत सारे आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. अच्छा, जो लोग ऑडियो स्ट्रीमिंग पे कमेंट कर रहे थे वो 20 मिनट के लिए लाइव होती है. ठीक है, तो उसके जो कमेंट्स होते हैं वो अलग से होते हैं, और जो पोस्ट पे हमारी कमेंट होते हैं वहां से मैं आप लोगों के कमेंट्स को इंक्लूड करती हूँ. ठीक है, और दोनों साइड से मैं कभी कभार इंक्लूड कर लेती हूँ. ठीक है, तो हम वहां से भी इंक्लूड करेंगे. और जो हमारी पोस्ट है ना, इस वक्त पब्लिश की हुई कुछ देर पहले, यानी कि एक घंटा पहले, वहां से आप लोगों के कमेंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है. तो अगर आप किसी और पेज के ऊपर, किसी और पोस्ट के ऊपर, मेक श्योर कि पोस्ट आप देख लेंगे कितनी देर पहले पब्लिश की गई है. अगर तो वो एक घंटा पहले या डेढ़ घंटा पहले पब्लिश की गई है, तो इट मीन्स कि वहां से आप लोगों के कमेंट्स को मैं इंक्लूड करूंगी. अगर कोई एक दो दिन पुरानी पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं तो वहां से डेफिनेटली इंक्लूड जो है नहीं किया जाएगा. तो आप पहले चेक कर लिया करें कि पोस्ट जो है वो लेटेस्ट है या फिर पुरानी है. ठीक है, ये चीज करके आप लोग कमेंट्स किया करें. 03000113488. गाना चलाएं. ओके, गाना चलाएंगे. गाना हम प्ले करेंगे बाय आसिम अजहर.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ, सट, धक लगण, पुराणनि जख़्म जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: सुनी

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: DBSM ऐं पंज साल DPD जनेट ॿिन सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW ऐं CNA ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिनि। जनेट ॿ सालनि जे कोर्सेज में दाख़िला बिल्कुल फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूद आहे। स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156 3562
3: ऐं 03008311207।
4: सखर की आवाज़।

हमला कया अमेरिकी फौज मौजूद अमेरिकी हमलन जो मकसद ईरान के आबना हरमुज में बहरी जहाजन के हमलन की सलाहियत के घटाण हो। ईरान जो भी अमेरिका ते जवाबी वार कोत उर्दन में अमेरिकी अड्डन ते हमला पासदारन इनकलाब मौजूद उर्दन में अमेरिकी रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर हैंगर्स के तबाह किया वो है। कोत में भी अमेरिकी फौज के अड्डन ते ड्रोन हमलन के नतीजे में वही तबाही थी है।

रेड सी में सऊदी अरब जे बिन ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाने जी दावा। सऊदी अरब एक जहाज ते हमले जी तस्दीक करे छी। यमनी हुसैन जो चवण है ते बहरी नाकाबंदी जी भनचड़ी ते सऊदी अरब जे ऑयल टैंकर्स के निशानो बनाए वयो। सऊदी इख्तियारन मूजिब एक जहाज ते हमलो थियो आहे, हमलो महफूज आहे। पाकिस्तान पारा विच ओवर में जारी छिकताण में सऊदी अरब के शामिल करण वारी कोशिशन ते गणती जाहिर। परदेही तर्जमान चयो आहे त पाकिस्तान सऊदी अरब जे बहरी जहाजन के हुसैन जे धमकियुनि जी मज़म्मत करे थो। वापारी जहाजन के धमकियूं इलाइक़े अमून इस्तेकाम लाइ ख़तरनाक आहिनि। पाकिस्तान पंहिंजे बहरी मुफ़ादनि जी दिफ़ा लाइ पुरज़म आहे, धुरियूं सहप जो मुज़ाहिरो कनि। पाकिस्तान अमून जे क़याम वारियुनि कोशिशनि खे जारी रखंदो।

बबरलो धरणे ते पुलिस का दौरान गिरफ्तार कयल केटीएन न्यूज सखर जे रिपोर्टर साहिल जोगी समेत केतरा ई मुजाहिरीन गुम। गुजरियल रात बबरलो बाईपास ते प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि मुगली ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ धरणो हणी वेठलनि ते पुलिस कड़की पई। लठबाज़ी ऐं शेलिंग औरतनि ऐं ॿारनि समेत केतिरा ई मुज़ाहिरीन ज़ख़्मी। बबरलोए में धरणे तशदुद ख़िलाफ़ हैदराबाद में क़ौमी शाहरा ते एहतजाज कंदड़नि खे बि पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो। नसीम नगर थाना

बबल लोधाणे ते पुलिस चढ़ाई ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ राधण ऐं कनकोट में एहतजाज। राधण में सियासी समाजी धुरियुनि ऐं शहरियुनि एहतजाजी रैली कढी मुख चौक ते धरणो हयो। कंदकोट में एसटीपी कारकुननि आफ़ीस खां एहतजाजी रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरीन खे आज़ाद थियण जो मुतालबो। बलूचिस्तान जे इलाइक़े में मस्तोंग सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गार्ड समेत शहीद, एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर दहशतगर्द

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनिब दंदड़े तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुली दुआओं के संबंध है, चाहतों की बारिश खिलास वल खजानों के साथ दुआ है, पल से पल तक आसे कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नीचे जागता जमीन से आसमां तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, दिल से खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे, सो आमीन। बिल्कुल मौजूदी जनारी सेकंड मेहराब पर मातली और स्टूडियो से आपके साथ मौजूदी जनाब इस खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है व्हाइटिश एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या ऐसी खास बातें हैं जो कि आप लोगों को बताई जाएंगी प्रोग्राम में, वो आप लोगों को पता चलेगा आगे आगे। बिल्कुल जी, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रोग्राम

जी क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कसीदा जो कि आप लोगों ने सुना। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे। और जनाब आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है तो वो भी जरा बता देते हैं। ओके जी, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि कभी ना कभी हमने इस बारे में जरूर सोचा होगा। भाई जो मेरी तरह के लोग हैं ना, यानी कि जो सोचते हैं कि भाई आगे पता नहीं क्या होगा, कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, तो उन लोगों ने इस बारे में लाजमी सोचा होगा। अगर आप जो है ना आज ऐसा टॉपिक है कि जरा आज भी आप फर्ज करेंगे और आज आप जरा फर्ज कीजिए कि आप रात को सोए, ठीक है, जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं, सारी दुनिया खाली है। तो आप बताएं आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे, पूरी दुनिया में सिर्फ आप अकेले इंसान हैं तो आप क्या करेंगे। ओके जी, मुझे बताएं जल्दी से। वैसे तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो जानते होंगे, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं। और इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए जल्दी से, अगर आप रात को सोए सुबह उठे देखें भाई पूरी दुनिया में जो है लोग गायब हो चुके हैं, आप अकेले दुनिया में बचे हैं तो आप क्या करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए, एन कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना पेज को जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, बताइए दुनिया वालों को कि मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से आप जो है ना परचेज करेंगे, अगर आप भी ये चाहते हैं भाई आपने मालूम ली है लेकिन आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए तो आप भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपको नंबर्स बताए जाएंगे प्रोग्राम के अंदर, जिनके पर आप रابطہ करके आराम से इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं। ओके हो गया। ओके जी, इसी के साथ साथ अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जी, बिस्मिल्ला। और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आप बिल्कुल नए वाले लिसनर ही हमारे नहीं जानते प्रोग्राम में कितने सारी जो है ना वो खूबसूरती की बातें होती हैं, तो आप लोगों को बताते चलें कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है, व्हाइट एज लवली क्रीम है जो कि फेयरनेस क्रीम है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप मिल रहा है, व्हाइट एज फेस वॉश मिल रहा है और व्हाइट एज का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मिल रहा है। उसके अलावा लोशन है, हेयर रिमूवल लोशन है जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर अवेलेबल है, ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि व्हाइट एज में है। उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है, ये तमाम प्रोडक्ट जिनके बारे में पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाएगा। ये सिर्फ डिस्क्लेमर था, बाकी तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहूंगी कि कितने सारे प्रोडक्ट्स और क्या क्या उनकी क्वालिटीज है। ओके जी, जल्दी से पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए। अगर आप रात को सोएं सुबह उठें देखें तो पूरी दुनिया में आप अकेले इंसान बचे हैं तो इस सूरत हाल पर आपका क्या रद्द अमल होने वाला है। अच्छा आबिद हमारे साथ मौजूद है, गुड जॉब, थैंक यू भाई जान। आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, मैं ठीक हूं, बताएं जी। कहते हैं कि वो जो आज मरने पर तुला है उसने जीकर भी तो देखा होगा, जिंदगी से हार मान लेने वाले अक्सर वही होते हैं जिन्होंने दर्द की इंतहा को करीब से देखा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बख्तली सियाल हमारे साथ मौजूद हैं, भाई को वेलकम कहा जाता है, यूनिस खोड़ो हमें सुन रहे हैं, गोट दौलत खोड़ो से आपको भी वेलकम कहा जाता है। चाचा खाली जूनी जो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, की आई हो खुश आयो वेगी भाईटी बिल्कुल खुश मजे में तां बुधा की वेगा चाचा। और आदिल हुसैन तमाम गानों लिखियो हलाइन की कोशिश कयूं था। अखलाक बलूच भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम असलम एंड वेलकम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

0: सिंध की आवाज।
1: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती, चमचमाती भी।
2: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी डुख्यो लगे थो।
2: त पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
2: न दा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6
5: बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
6: एक शानदार ऐं काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो,
5: फैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर,
6: रिहायशी प्लॉट्स।
0: सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी करो ले।

0: बिल्कुल ये ना है बाबा वाइट जो जो फेस वॉश है वो वाइटामिन सी ए वाइटामिन ई से तैयार थे
1: बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
2: एक शानदार आई काबिले एतमाद
0: हन जो जेको फॉर्म है वो तमाम न थो मिले तुम स्किन से सूट न थो करे तो वाइट एस जो जो ही वाइटामिन सी जो फेस वॉश है ना ये जरूर ट्राई करे दिस जो कलर है ना वो ऑरेंज कलर है।

के सफ़ा मारे छॾींदा आहिनि त उन्हनि खां बि तव्हांखे बचाईंदी, छो त वाइट एज लवली क्रीम जे अंदरि सनस्क्रीम बि एड थियल आहे ऐं वाइट एज लवली क्रीम जे अंदरि जेका सनस्क्रीम एड थियल आहे त उहा तव्हांजी स्किन जी प्रोटेक्शन कंदी ऐं तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी सिज जे ख़तरनाक असरातनि खां, सम्झो था। त वाइट एज लवली क्रीम सिर्फ़ न तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदी बल्कि तव्हांजी ख़ूबसूरती जी हिफ़ाज़त बि कंदी ऐं मुकमल जेको आहे न हीउ तमामु ज़बरदस्त हिकिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त वाकई तव्हां कहिड़ी सुठी शइ इस्तेमालु कयो था। ऐं वाइट एज लवली क्रीम जेका लाइट पिंक ऐं वाइट कलर जो जेको आहे न हीउ दॿो आहे जंहिंमें तव्हां वाइट एज लवली क्रीम जेका उहा परचेज़ करे सघो था। ऐं वाइट एज लवली क्रीम खे इस्तेमालु करण जो तरीक़ेकार बिल्कुलु इहो आहे त तव्हां ॾींहं जो बि लॻाए सघो था, राति जो बि लॻाए सघो था, जंहिंमहिल तव्हांजी दिलि चवे। हीउ उहो प्रोडक्ट आहे जेको बसि तव्हां लॻाईंदा ऐं तव्हां चुटकिन में रेडी थी वेंदा। बिल्कुलु अगरि तव्हांखे काॾे वञिणो आहे ऐं तव्हां जल्दबाज़ी में आहे, तव्हां मेकअप नथा करे सघो, मेकअप जो टाइम कोन्हे, वैसे गर्मी बि आहे त गर्मी में मेकअप वैसे न ई कयो त बहितर आहे। उन सूरत हाल में तव्हां वटि वाइट एज लवली क्रीम अगरि मौजूदु आहे त बस बाबा ॻाल्हि ई ख़तम थी वई। वाइट एज लवली क्रीम तव्हां थोरी मक़दार में पंहिंजे चहिरे ते अप्लाए कंदा। अप्लाए करण खां पहिरियां पंहिंजो फेस वॉश लाज़मी कजो। इन खां अलावा तव्हां वॾा बि लॻाए सघो था, तव्हां मर्द, मायूं, ॿार, बच्चा, हर कोई लॻाए सघे थो वाइट एज लवली क्रीम। तव्हां हर हिकु इंसान वटि वाइट एज लवली क्रीम त मतिलबु हुजणु घुर्जे, छो त हीउ हिकिड़ो तमामु ज़रूरत वारो ऐं तमामु इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आहे। ओके, जिन खां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जे बारे में बि, छो त तमामु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन खे न एक्नी प्रॉब्लम काफ़ी ज्यादा अची वेंदो आहे ऐं एक्नी प्रॉब्लम जेके हूंदा आहिनि अगरि हिकु दफ़ा तव्हांजी स्किन ते अची वियो त ॾाढा ख़तरनाक हूंदा आहिनि बाबा। उन जो वञणु जेको आहे न थोरो मुश्किल हूंदो आहे। तव्हां इलाही ट्राए करे ॾिसंदा आहियो, टोटका ट्राए कंदा आहियो, डॉक्टर्स ॾे वेंदा आहियो, तव्हांजो इलाही जेको आहे न बिल बि अची वेंदो आहे ऐं तव्हां सोचींदा त बाबा कहिड़ी मुश्किल में फासी विया आहियूं, कहिड़ी मुसीबत आहे। त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे सघो था। ही न सिर्फ़ तव्हांजे चहिरे जे एक्नी जो ख़ात्मो कंदो बल्कि ही हिकिड़ो मेडिकेटेड फार्मूलो बि आहे, तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयार थियल आहे। हिन खे हर स्किन टोन वारो माण्हू लॻाए सघे थो। फुल डॉक्टर जी निगरानी में तयार थियल आहे, हिन जे अंदर कोई बि केमिकल नाहे विधो वियो, फुल आयुर्वेदिक फार्मूली बूटियूं एड थियल आहिनि ऐं तव्हांखे तमामु हिकिड़ो जेको आहे न परफेक्ट प्रोडक्ट मिली वियो आहे जेको तव्हां एक्नी खे ख़तम करण लाइ इस्तेमालु करे सघो था। ऐं न सिर्फ़ एक्नी खे ख़तम कंदा बल्कि तव्हांजे चहिरे ते जेके एक्नी जा निशान हूंदा आहिनि, कोई कट जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, या फिर तव्हांजे चहिरे ते ब्लैक हेड्स आहिनि, वाइट हेड्स आहिनि, या फिर तव्हांजे चहिरे ते पोर्स आहिनि जेके ओपन थी विया आहिनि, या वरी तव्हांजे चहिरे ते एक्स्ट्रा ऑयल आहे जेको न, त हू एक्नी ठहण जो वजह हूंदो आहे, रीज़न हूंदो आहे। त अगरि तव्हां बि चाहियो था त हीउ जेको एक्स्ट्रा ऑयल आहे इहो स्किन तां ख़तम थी वञे त तव्हां डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब खे इस्तेमालु करे सघो था। ऐं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमालु तव्हां कंदा सुबुह जो बि कंदा ऐं राति जो बि कंदा, जेके सफ़ा घणा एक्नी आहिनि, सफ़ा घणा आहिनि, त उहे तव्हां टे मरतबा करे सघो था। लॻाइण खां पहिरियां तव्हां पंहिंजा हथ ऐं तव्हां पंहिंजो फेस चङी तरीक़े सां वॉश कजो, जीअं तव्हांजी स्किन बि क्लीन हुजे ऐं तव्हांजा हथ बि क्लीन हुजे। क्लीन जॾहिं तव्हां रहंदा त तव्हांजे एक्नी खे जेको आहे न ठीकु थियण में टाइम थोरो लॻंदो आहे। जॾहिं तव्हां घड़ी घड़ी एक्नी वारे चेहरे ते पंहिंजा हथ फेरींदा आहियो, हथ लॻाईंदा आहियो, त तव्हांजा एक्नी जेके न वधी वेंदा आहिनि। ऐं इहा थोरी आदत बि पाण मां कढी छॾियो, अगरि तव्हांजे चेहरे ते एक्नी आहे त पंहिंजे चेहरे ते घड़ी घड़ी हथ न घुमायो, सम्झो था। छो त कुझु चीज़ूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके तव्हां पाण अगरि कंदा आहियो ऐं तव्हांखे आदत हूंदी आहे, उन आदत जी वजह सां तव्हांजी स्किन ख़राब थी वेंदी आहे। सो इहे तमामु प्रोडक्ट आहिनि जेके वाइट एज वारनि जा आहिनि, जेके तव्हां इस्तेमालु करे पंहिंजी ख़ूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था। ऐं अगरि तव्हां बि चओ था त असांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल न आहिनि, त पोइ तव्हां डायल कंदो बाबा, नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई, नंबर डायल करे वठो। नंबर आहे 03-1250-9070, 03-1250-2590-7, ऐं उन खां अलावा ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309, 03-27-38-4309। ही नंबर्स आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। वाइट एज जा तमामु प्रोडक्ट अवेलेबल करायो जीअं तव्हांखे वठण में आसानी थी वञे ऐं तव्हां वठो, तव्हां इस्तेमालु कयो ऐं तव्हां सुहिणा थी वञो। बिल्कुलु ई तव्हांखे चवंदा भली करे आया, प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, तव्हां ताईं पहुचायो वञे थो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तव्हां खां सवाल पुछो अथमि, तव्हां फर्ज़ करियो राति जो सुम्हो था, सुबुह जो उथो था, ॾिसो था बाबा दुनिया में सिर्फ़ तव्हां अकेला रहिजी विया आहियो, कोई बि कोन्हे को सॼी दुनिया में, त तव्हां छा कंदा?

गई थी, पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, कीजिए जरा पोस्ट को लाइक और शेयर ताकि पता चले कि कितने सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ साथ संजीव जयपाल हमारे साथ कहते हाय हेलो, अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है सकरण से, आप हमारा शो सुन रहे हैं, मुमताज मलिक का गाना आपको जरूर सुनाएंगे मेरे भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और उसके अलावा हैं जी रिजवान अली कहते हैं कि दोस्ती ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी है, रिश्ता इश्क भी है, याद की जंजीर भी है। वाह वाह वाह वाह। साजिद हुसैन सूमर हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम।

ಯಶಿದ ವಾಸ್ತೈವ ಚಿಕ್ಕನಾಲು ಯಶಿದ ಸಮಝಣ ಜಿ ಜಿಮ್ಮೇದಾರಿ ಹರ ಕೇಜಿ ಪೈಂಜಿ बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। इस स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय हम भी अच गया की आयो सब खुश आयो सॉरी अदा कुछ दिन छुट्टी कई आ त कम थोरो वधी वियो दिमाग में कर सुन न बिल्कुल खबर आ मुखे जदे इंसान छुट्टी कंदो आ त थोरो कम जको आ न वो वधी वेंदो आ सो डोंट वरी अच्छा उन अलावा मोहसिन अली हमारे साथ है वालेकुम जी मोहसिन वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भा तुम लाड़काने खास ज्वाइन करवाए थैंक यू सुमाटो गोपाल कहते टॉपिक आंसर रेडियो पर आपको आपका प्रोग्राम सुनूंगा आपके अच्छा मैं भी तो फिर गायब होंगी ना ये भी तो सोचे अच्छा अली रज़ा हमारे साथ ही अली रज़ा भाई दुबई से हमें सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच भाई जान खुशामदीद कहा जाता है किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में नेटवर्क चेक करूंगा वो है या वो भी गया वो भी गयो तो फिर क्या हो अच्छा खलील अहमद कहते हैं सब खां पहिरीं मां अल्लाह जो शुक्र अदा कंदसि त मां जिंदा आहियां पोइ पूरी दुनिया में घुमी ॾिसंदसि त वाकई को बि इंसान बाक़ी नाहे या जेकॾहिं सच पिच मां इहा हक़ में शामिल थी

0: सी में सऊदी अरब जे बिन आयल टैंकर्स के निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी अरब एक जहाज ते हमले जी तस्दीक करे नाकाबंदी जी। सऊदी अरब जे ऑयल टैंकर्स के निशानो बणाए सऊदी एक जहाज ते हमलो थियो आहे, हमलो महफूज आहे। सचो भरान में सऊदी अरब के शामिल करण वारन कोशिश जाहिर, पर जहाजन के हुसैन के धमकिन की मज़म्मत करे तो व्यापारी जहाजन के धमकियों इलाका अमुन इस्तकाम लाए खतरनाक आहिन। पाकिस्तान पंहिंजे बहरी मुफादन जी दिफ़ा लाइ पुरअज़म आहे, धुरियूं सहप जो मुज़ाहिरो कनि। पाकिस्तान अमुन जे क़याम वारियूं कोशिशूं जारी रखंदो। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास, सूबाई वज़ीर ऐं लाॻापियल अमलदार शरीक, 22 नुकाती एजेंडा ते ग़ौर। धरणे ते पुलिस कार दौरान गिरफ़्तार कयल केटीएन जी मुज़ाहिरीन गुम, गुज़िरियल राति बबलो बाईपास ते प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि भुगी, लठबाज़ जे शिलंग औरतनि ऐं ॿारनि समेत केतिरा ई मुज़ाहिरीन ज़ख़्मी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यारे ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे, हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
4: अञा ताईं फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
3: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़न सां तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में सूर, सूर कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्ज़िश खां पोइ छिक हर हालत में बहितरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध, जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक पाण सां गॾु खणी वञा।
3: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

आप उनसे फायदा उठाइए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहें। और भी इसी के साथ साथ अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है और हम कैसे अवेलेबल कराएं, कैसे परचेज कर सकते हैं, तो बस आपको जो नंबर बता रही हूँ ना, वो नंबर आप डायल कीजिएगा, कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपके एरिया में नहीं मिलते। तो नंबर है पहला जो कि आप नोट करेंगे, ओके जी, 03-12-50-25-907 और दूसरा नंबर है 03-27-38-43-09। ये दो नंबर्स हैं जो कि आप डायल कर सकते हैं। अगर एक नहीं मिलता हो, एक पिक नहीं हो, तो आप दूसरे के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, सो जल्दी जल्दी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। सो जनाब, यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश है जो कि आप लोगों की खूबसूरती के मुताबिक ही तैयार किए गए हैं। इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे।

ओके जी, सो मैंने आज आप लोगों से टॉपिक पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं, फर्ज कर लें अगर आप रात सोते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, आप देखते हैं भाई दुनिया में आप अकेले रह गए हैं, सारी दुनिया के जो लोग हैं वो गायब हो चुके हैं, आप दुनिया में अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे? इसी के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस जरा पैनल की जानिब आ जाते हैं। ओके जी, हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? कहती हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात सुमेरा बाजी और सब स्वीट सिस्टर्स के नाम। ओके जी, आप सबको वेलकम एंड थैंक यू सो मच फजीला सिंधी, आप हमारे साथ मौजूद।

मेजबान आए हैं। उनके अलावा कश्मोर भाई नहीं कश्मोर से अखलाक भाई हमारे साथ हैं। सिदरा गाना लगाएगा बिल्कुल तांचो गानो हलाइना सी। और मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है सलाम अलैकुम बाजी वाइट एज ब्यूटी क्रीम बड़ी जबरदस्त है आप लगाते हैं क्या बात है जी बहुत बढ़िया अल्लाह हजार।

યુકે માં તાજો મોબતો એન પ્રોગ્રામ બધો પ્યા આજે યુકે સાને પ્રોગ્રામ બધો તો સમજો તા ओके जी ये हमारी सादे हैप्पी गर्ल कहती हैं कैसी हो मैं दूसरे मोबाइल से आपको मैसेज कर रही हूँ पहले मोबाइल से क्यों नहीं कर रही जो दूसरे मोबाइल से कर रही हो उनका अलावा कहती हैं अच्छा यूके भाई कहते हैं बाजी में अगर अकेला बचा तो सबके खाने वाली चीजें खा जाऊंगा इतना खाना अकेले आप कैसे खा सकते हैं यूके भाई वैसे ये बात है जो फूडी लोग होते हैं ना वो चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन उनको हमें खाने की पड़ी रहती है अगर मैं भी ये सोच रही थी कि मैंने जो ये सवाल आप लोगों से पूछा है अगर हाँ ये मैं खुद के ऊपर बोलूँ तो भाई मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मैं जो है ना बहुत सारा खाना खाऊंगी हम भी फूडी इंसान है।

आवाज़ सां ई मां शमन जो गानो ॿुधो पिया. अच्छा इरम, आप हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप हमारा शो सुन रही हैं. गोठ मोहम्मद तैयब थिबू का हबी बोला थिबू कहती तमाम शो वेरी वेरी नाइस है, सलाम तमा के, वालेकुम असलम, प्यारा भा तमा के. और हमारे साथ हैं जी यूके भाई, आपने वही मैसेज दोबारा से सेंड कर दिया है, थैंक यू उसके लिए. और हबी बोला थिबू कहते सॉन्ग बुधरायो तेरा मेरा है प्यार अमर हाजिर हाजिर. इरम कहती यार मैंने अच्छा कहती है स्टोरी समझने, इसको स्टोरी को समझने के लिए बहुत जो है ना बड़ा सा दिमाग होना चाहिए जो मेरे पास. भाई कैसी बातें कर

ओके जी ओके ॾिसी वठूं था अहिड़ो देश आहे त पोइ हलिया हलंदासीं। अच्छा ये हमारे साथी अदी सिद्धो आप से रिक्वेस्ट है, कैसे कह सकते हैं हुरिया आपने मुझे देखा है क्या, प्लीज लीव वफा की थी न रही यार डेडिकेट एंड यू ओके भा कोशिश ये हमारे साथ हैं प्लीज स्वीटी। सर मैं गाना लगा से नवाब शाह से रानी बलोच हमारे साथ हैं, क्या बात रानी हमारे साथ हैं।

ओके जी, अली रजा आज उदय प्रोग्राम सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं अली रजा आपको। और हैप्पी गर्ल कहती हैं, हाय आरजे मैं भी आ गई इस प्रोग्राम में, शो तो एक्सीलेंट है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं आप कैसी हैं? उनका अलावा हैं जी हमारे साथ, ओके जी ओके, अब्दुल अहद अब्बासी, वालेकुम अस्सलाम।

0: अच्छा अब्दुल रजाक बलोच भाई हमें सुन रहे हैं, दादू से वेलकम करते हैं। मोहसिन अली हमारे साथ है। मोहसिन अली कहते हैं,
1: झूले ठंडो मोहब्बत दो, जितने झूले ठंडो मोहब्बत।
0: ओके जी मोहसिन अली, आप मीरो खान चौक लाड़काना से हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है, आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। मोहम्मद समान भाई आपको भी वेलकम इन खुशामदीद। और हमारे साथ है यहाँ पर इनोसेंट रांझा, कहते हैं हेलो कैसी आप, आपकी आवाज इतनी स्वीट।

एक्ट कैसे, वो मैं नहीं बता सकती. अल्लाह सही था जो कट वाके वडो हुयो. उन खां अलावा जेको आ सो तव्हां बि अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन लॻाई आहे त बाबा जल्दी लॻायो. छाजो इंतज़ार कयो पिया, कहिड़ी शइ आहे जेका तव्हां खे इंतज़ार कराए पई? तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जीअं तव्हां बि सुहिणा सुहिणा थी वञो, सुहिणा सुहिणा प्यारा प्यारा मिठा मिठा. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हांजी हर जनरल स्टोर ते मिली रही आहे. नथी मिले त जेके नंबर ॿुधाया उन्हनि ते राबितो करे वठो, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा फलाणी जॻह ते कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करायो त हुन सां गॾु तव्हां डी स्किन फेस वॉश बि वठिजो, उहो बि अवेलेबल करायो. ऐं ॿई चीज़ूं गॾु वठो, ॿई चीज़ूं गॾु लॻायो जीअं तव्हां सफ़ा सोणा थी वञो, परफेक्ट परफेक्ट सोणा. ओके, टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो. जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं, तव्हां करे न वञो, हिते वेठा हुजो. मां ओहीअ वञी ओहीअ मोटा थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाई जेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाई जेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. हणो जीअं तव्हां बि सोणा थियो.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
1: फकीरी,
2: इट्स 2:30 PM। This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream।
4: हीट सोप जल्दी इन्फेक्ट का बेहतरीन जरिया है और खारिश के छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से
5: गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, आराम करने मद फकीरी नींद
4: और अच्छे नाचिए।
6: सिर्फ डी स्ट्रीम इन विटामिन ई जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बाकी स्पोर्ट्स के करे खत्म। आई डी कुदरती ब्यूटी क्रीम
0: हैदराबाद।

तव्हांखे नंबर ॿुधायां पई, नंबर ते राबितो तव्हां लाज़मी, हिकिड़ो बंदि मिले त तव्हां ॿिए ते ट्राए करे ॾिसो, हिकिड़ो त खुलियल ई हूंदो, त हिकिड़े ते लाज़मी तव्हां ट्राए करे ॾिसो, कॉल कयो या वरी मैसेज कयो, हुननि खे ॾिसो बाबा फलाणी जॻह ते असां आहियूं, फलाणी जॻह ते तव्हांजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन वीचारा अवेलेबल कर सघंदी, तव्हां भॼंदा वेंदा वठंदा ईंदा ऐं तव्हां पोइ इस्तेमाल कंदा, त तव्हां वठो सभ खां पहिरियां पोइ इस्तेमाल कयो। वरी गानो चयो त बाबा पाण वणियो हूंदो तव्हांखे, मास्टर या मास्टर मंज़ूर या मंज़ूर सखराइन आहिनि, ॿिन्हिनि में मां थोरो कंफ्यूज़ थी वेंदी आहियां, सो ॿिन्हिनि मां मिड़ी हिकिड़ो आहे गानो ॿुधंदासीं, ॾाढो भलो गानो आहे, ऐं उन खां अलावा इरम कहती आप ही जवाब है, जब कोई ना होगा तो जो जो चीजें खाने के लिए मेरे मेरा दिल चाहेगा मैं वो सब चीजें खाऊंगी, आई एम अरसो फूडी बंदी, इरम मुगेरी फ्रॉम कंबर सिटी, क्या बात है भैया बाबा। अच्छा मामा सलमान भाई कहते डोम यूफोन जो सोट टेलीनार जो चाचो जोंग जो पियो मोबलिंग खान इन दुनिया में लाडाणो करी वयो सच में अली ॾाढो अफ़सोस थियो। अच्छा ये है हमारे साथ हैप्पी कहती है कि आपके सवाल का जवाब है अच्छा कहती है जब मैं नींद से उठूंगी और मैं सोचूंगी ये सब कैसे हो गया, ये बात सोचने वाली है, हाँ बिल्कुल सोचने वाली है, आप सोचिए सोचिए, और साथ में मुझे ये भी बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रही है या डी स्किन का फेस वॉश लगाना शुरू किया है, दोनों चीजें कमाल है भाई, अब आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। अच्छा रिजवान अली बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपको भी अच्छा किशोर भाई कहते अदी जिते कोशिश थिए थी उते समझो कोशिश ही थींदी, हलंदो कोन, ये ना हलाईंदा भी आहियूं।

कोन न बाबा वयल माण्हू कोन्हनि मोटल पर तव्हांजी वयल ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिली सघे थी छो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करण वारा आहियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांजी जेका ख़ूबसूरती करे गायब थी वई न उहा तव्हांखे वापसि मिली वेंदव ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे हुन खां अलावा सिर्फ़ पीस बि ॾींदव इस्तेमाल कंदा हर लाइ सेंसिटिव स्किन लॻाए डेडिकेटेड फार्मूलो आहे रानी में तयार कई आहे बाबा तव्हां बि ॾिसो जे तव्हांखे ख़ूबसूरती मिले जेका तव्हां हमेशा हासिल करणु चाहियो पिया।

ओके जी ओके, गाना बहुत अच्छा था ये वाला गाना, जिसकी फरमाइश एक भाई ने कर दी थी पैनल पर, तो मैंने सोचा ये वाला गाना भी सुन लेते हैं। अब बस लास्ट लिंक में तव्हांखे डस डस गाना ॿुधराईंदी वेंदा।

0: कर
1: ओखरी सो अज मां मां का सवाल मां राजो सुमो था अई ता सुबह जो उठो था ठीक आ उठन सा तवा के खबर पईती ता सडी दुनिया में सिर्फ तवा अकेला रहजी वयायो कोई भी कोने को ता तवा अकेला छा कदा बस यो बुधाय जो मुखे अखलाक भाई कहते अंसर रंगीला कारतूस उडाडींदासी मन को लभी पर ओके जेक बाबा से वेलकम करती हूं आपको दादा वाकई बहुत दुख हुआ सच में हाँ जी दुख की खबर थी यादा अजा मुख्य यादा सुधरो कम ही दव
0: साथ गई इन जलती बलती गलियों में इन जलती
1: अच्छा फजीला कह रही है कि मेरे लिए दुआ करिए मैं बीमार हो गई हूँ फजीला के लिए ना सारे लोग दुआ कह रहे हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए हमारी बहुत अच्छी लिसनर है और वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का है मुनव्वर खोड़ो हम मुनव्वर खोड़ो जाके ज्वाइन
0: कर जाऊँ कहाँ
1: अच्छा हैप्पी की क्रीम यूज नहीं करती मेरी उम्र अभी 15 साल है बाकी फैमिली में कहा है मेरी फैमिली क्रीम यूज करेगी और मैं सोप यूज करूंगी नहीं आप डी तो डी स्किन का फेस वॉश ट्राई करके देखिएगा ठीक है।

0: गया।
1: अबे यहाँ भी ॾाढी दुख जी ॻाल्हि आहे जेका हीउ चाचो ॿुधाए वियो सो असां ॿियो बि गानो ॿुधंदासीं जेको असांजी लिस्ट में मौजूद आहे ही आहे हुमेरा चन्ना जी आवाज़ में गानो बिल्कुल जनाब आप सुन रहे प्रोग्राम वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मुझे जल्दी से बताइए ताकि मुझे भाई तसली थी वजह मुझे दिल के सुकून मिले था हाँ मुझे लिसनर लगाए पाया

साईं वाह, वाह साईं वाह, भलो गानो। अली मुर्तज़ा कहते हैं कि खूबसूरती जी गाल यही था कयो जो कंपनी असा के गिफ्ट कंदी। बिल्कुल कंपनी का गिफ्ट कराइंदासी ताके। बस इरफान साहब जको है ना उम्र का मोटी थे तो उनन के चौंदासी बाबा कोड़ो प्लान ठायो जो असा लिसनर्स के ये सफा जको है ना गिफ्टियो हणो मुंह में सोना थी वन एक दफा तक गिफ्ट कदासी दिल चवी तो बबा हाँ असा वो छो तो तक ना दिल सरंदी ही को डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजन या वाइट एज प्रोडक्ट हो सब तुम लगाइंदा बार बार लगाइंदा तुम चवंदा तो बस हाँ असा सोनो थियणो है। अच्छा राशिद रिंद अस गुड मौजूद है भा तुम मोहबित प्रोग्राम बुध पाया दर्दी दिल कहती है कि फिर मैं दबाकर बिरयानी खाऊंगी घूमूंगी फिरूंगी जब तक जाऊंगी तो फर्ज करूंगी सारी दुनिया वापस आ गई। ओके है ना ये बढ़िया था फिर मौजूद आए थैंक यू सो मच मच मच। अच्छा मोइन बिरो मौजूद है मीरो खान चौक लाड़काने का तुम असा जॉइन कर थैंक यू सो मच।

ॾिसो हिते सफ़ा सही ॻाल्हि। अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हणंदा पोइ तव्हां बि प्यारे जे लाइक़ थी वेंदा। सो तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो जे तव्हां सभु सोणा सोणा थी वञो, प्यारा प्यारा थी वञो।

0: दादा अगर अभी तक आप ये सोच रहे कि हम इस्तेमाल करेंगे तो बाबा एतरो न सोची ना कयो अगर तव्हां चाहियो था त तव्हां जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल थी वञनि या फिर तव्हां पाण अवेलेबल कराइण जी कोशिश में आहे त तव्हां जल्दी सिटीज़ में अवेलेबल करायो चाहे तव्हां कंहिं बि ॻोठ में आयो शहर में आयो किथे बि आयो जल्दी जल्दी तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करण शुरू कयो ठीक आहे समीरो चौहान भाउ सां गॾु मौजूद आहे मौसम केते में वाइट एज फेस वॉश यूज़ कंदो आहियां वाह भाउ वाह अच्छा ॻाल्हि कई तव्हांजी उन खां अलावा दर्द दिल केते सिदरा थैंक यू सो मच मच मच जी आपका भी मच मच मच और जवान मोहम्मद बचल शंबानी भाई हमारे साथ है आपको भी वेलकम कहा जाता है ओके जी अली मुर्तजा कहते हैं
1: मैं समझा था तुम हो तो क्या मेरी
0: सही गाल वैसे कदी कदी वाकई असो दिल चवंदा था इन दुनिया में सिर्फ अस अकेला हो कोई भी न हो अगर वाकई थी वने तो पोए सोचो त किलो मतलब जेको आहे न इंसान पाण खे अकेलो फील कंदो जेको इंसान अकेलो त मतलब रही नथो सघे न हीउ जेको सिस्टम अला पाक ठाहियो आहे त उहो सफ़ा सही ठाहियो आहे माण्हू माण्हू सां ॿधियल आहे ऐं हुन खां अलावा तव्हां पंहिंजो जेको आहे न ख़्यालु रखंदा कयो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखंदा कयो चाहे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी वाइटेज जा प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हां इस्तेमाल कयो जीअं तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ा बरक़रार रहे ऐं तव्हां हमेशह सुहिणा सुहिणा रहो अच्छा ये हमारे साथ फौजी पठान खान खोसो भाई तव्हां गानो लिखियो आहे तव्हांजो गानो बिल्कुल नेक्स्ट प्रोग्राम में हलाईंदासीं आज़ाद अली खोसो शहबाज़ खोसो शहबान खोसो खे तव्हां डेडिकेट कयो आहे सो थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु मौजूदु आहियो वरी तव्हां सां जेका मुंहिंजी मुलाक़ात थी पई उहो 5 बजे वारे प्रोग्राम में थी पई सो पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखंदा ऐं मूंखे 5 बजे वारे प्रोग्राम में जॉइन कंदा सोच न मोकिलाणी नाहे सिन सलामत सा सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर

हमला कया अमेरिकी फौज मौजूदा अमेरिकी हमलन जो मकसद ईरान के आबना हमद में बहरी जहाजन के हमलन की सलाहित के घटायण हो। ईरान जो भी अमेरिका ते जवाबी वार कोई ते उर्दन में अमेरिकी अड्डन ते हमला पासदार इंकलाब मौजूद उर्दन में अमेरिकी रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर हैंगर्स के तबाह किया वो है। कोवैत में भी अमेरिकी फौज के अड्डन ते ड्रोन हमलन के नतीजे में वही तबाही थी है।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर जोड़नि जी साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, ऑइंटमेंट सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो। फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।

जी के मुताबिक अर्जेंटाइन में लोग खुद को सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि टीम की कामयाबी का हिस्सा समझते हैं। इनके बकौल यही वजह है कि मुख्तलिफ रसूमात के जरिए शायकीन ये महसूस करते हैं वो अपनी टीम के लिए खुशकिस्मती ला रहे हैं, बदकिस्मती को दूर कर रहे हैं। अर्जेंटाइन के लेजेंडरी फुटबॉलर डियागो मेराडोना आज भी मद्दाओं के दिलों में जिंदा है। ब्यूनस आयरस में इनके साबका घर को अकीदत की अलामत के तौर पर सजा दिया गया, जहां शायकीन इनसे मंसूब यादगार पर हाजिरी देते हैं। बाज मद्दा अब भी पुरानी रिवायत के मुताबिक मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर या स्टिकर्स फ्रीजर में रखकर अपनी टीम की कामयाबी की दुआ करते हैं। ओ माय गॉड, हैला क्या कहें हम, हर एक अपना अकीदा है। एनीवे जनाब, यहाँ पर जो है हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की जानिब, हम ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।

0: लहर जिंदगी की लहर GFM E3
1: नीम पिघली हीट सॉप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: हीट सॉप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम पिघली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुंघरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी सारियो ऐसा कुरान के समझी उधंदा FM 88 नेटवर्क।

0: अदा वेलकम कहेंगे आपको, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? चले ठीक है, ओके, दोस्तों को याद कर लें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुए, थैंक यू। हमने आपसे पूछा है कि दो लोग हैं आपके पास, आपको उन दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है। एक शख्स वो है जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, दूसरा वो इंसान है जिससे आप सच्चा प्यार करते हैं। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम कहते हैं जनाब, कौन बात कर रहे हैं?
1: ठीक
0: है। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल्सो गुड। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
1: जो हमें चाहे।
0: अच्छा जी, आप भी उसे ही सिलेक्ट करेंगे जिसे आपसे मोहब्बत होगी?
1: हाँ।
0: सही, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जनाब, दो लोग हैं आपकी लाइफ में, एक वो है जिससे आपको मोहब्बत है और दूसरा वो जिसको एक क्या कहा था मैंने कि जिससे आपको मोहब्बत है, ठीक है, और एक वो है जिसे आपसे मोहब्बत है, ठीक है, एक वो है जिसे आप चाहते हैं, एक वो इंसान है जो आपकी सच्ची चाहत रखता है, आपने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रहा
1: है?
0: खुश आमदीद कहते हैं आपको, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से?
1: जो हम

0: चले ठीक है, क्या कहेंगी सब सुनने वालों को, कोई पैगाम देना चाहेंगी? किसका?
1: अकरम राई।
0: ओके, चेक करती हूँ, अगर अकरम राई का सॉन्ग मौजूद हुआ हम आपको प्रोग्राम के सेकंड और में सुना देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और जनाब, ब्रेक का वक्त भी नजदीक नजदीक है, नेड़े नेड़े है, करीब करीब है। तो जनाब, आपके जो है हमने कॉल्स तो ली हैं, मैसेजेस भी ले लेते हैं। अच्छा जी, चिश्ती सक्खर से हमारे साथ है, एमपी के लिखा हुआ है, चिश्ती लिखा हुआ है, एफएम लिखा हुआ है सक्खर। हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट बहुत अच्छा, अच्छी बात से लिया है, बहुत अच्छा लगा। बट एक बात कहना चाहता हूँ, आपने क्या लिखा है, हमदिया कलाम लगाया। जी बिल्कुल, चलें ठीक है, जो आपने नोटिस करवाया ऐसा ही होगा। फिर ये होगा, इसमें हम

वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सां फोन ते राबतो। सऊदी अरब जे बहरी इजाज़न ते हुसैन जे हमलन जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत। सऊदी अरब सां मुकमल एकीअ जो इज़हार। शहबाज शरीफ चयो त मां फील्ड मार्शल ऐं क़ौम सऊदी क़यादत ऐं अवाम सां गॾु बीठल आहे। सऊदी बहरी टैंकर्स ते हमला कंहिं बि सूरत में क़बूल जोगा न आहिनि। हमला आलमी कानूननि जी सिधी भञकड़ी आहे। अहिड़नि क़दमनि सां इलाइक़े जी सलामती ऐं अमन खे नुक़सान थी सघे थो। अहद पारां पंज

करण गणती जोगो चिड़ डियारींदड़ कदम आहे। अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान खिलाफ दहशतगर्दी लाइ इस्तेमाल न थियण घुर्जे। आपने अरमुस्ता अमेरिका ईरान में सूबे ते 12 ॾींहं ते हमला। अमेरिका जो ईराली सूबे खुस्तान में मुसाफिर टर्मिनल ते हमलो। ब शहरी शहीद फेरक बोशेर ऐं ते बि हमला कया। अमेरिकी फ़ौज मूजिबि अमेरिकी हमलनि जो मक़सदु ईरान जे आपने हरमुज में बहरी जहाज़नि खे हमलनि जी सलाहियत खे घटाइण हो। ईरान जो बि अमेरिका ते जवाबी वार पोए ते उर्दन में अमेरिकी अॾनि ते हमला। फाज़ल इनकलाब मूजिबि उर्दन में अमेरिकी रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर हैंगर खे तबाह कयो वियो आहे। कोइत में नतीजे में वॾी तबाही थी आहे। जमनी होसिन जे रेड सी में सऊदी अरब जे ॿिनि ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी अरब हिकु जहाज़ ते हमले जी तसदीक करे छॾी। जमनी होसिन जो चवणु आहे त बहरी नाकाबंदी जी भञकिड़े ते सऊदी अरब जे ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणायो वियो। सऊदी इख़्तियारनि मूजिबि हिकु जहाज़ ते हमलो थियो आहे। अमलो महफ़ूज़ आहे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी खिते लाइ ख़तरो आहे। का बि ज़िमेदार रियासत शहरनि जे निशानो बणजण ते ख़ामोश न थी वेही सघे। पाकिस्तान एमनेस्टी इंटरनेशनल जी रिपोर्ट खे रद्द करे छॾियो। परडे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदरा बि चयो आहे त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मां ख़तरनि ते जवाब ॾिनो आहे। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दनि खे थाकनि खे निशानो बणायो आहे। पाकिस्तान खिते में अमुन जे क़याम वारनि कोशिशुनि मां मायूस नाहे थियो। अमुन जो रस्तो इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादि ज़रिए मिली लाइ चेहरी ॾेई छॾी। वॾे सैद वज़ीर सैद मुराद अली शाह सदारत हेठि काबिना जो इजलास। सिंध सियाला सेक्रेटरी मुलाज़िमनि लाइ सिहत इंश्योरेंस वारी सहूलियत में वाद जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई। भारत पारां पाकिस्तानी दरियाहनि में पाणी छॾण बाबति का बि ॼाण नाहे। भारतीय डैमनि में अञा बि पाणी ज़खीरो करण जी गुंजाइश मौजूदु आहे। सेल कमीशन जे सेनेट कमेटीअ खे ब्रीफिंग कमेटीअ खे ॿुधायो वियो त चंद कादिराबाद ऐं तरमेउ जे कुझु हंधि ते वॾे ॿोॾि आहे। काबिल दरिया में नौशेरा, सिंधू दरिया में तरबेला ऐं चश्मा वटि हेठें

0: इजलास में सिंध ऐं पंजाबी आबाशी खातनि जी सेक्रेटरी शिरकत न कई। कमेटी पारां कावड़ जो इज़हार जाम सैफुल्ला धारे जो चयो, ईंदड़ इजलास में सेक्रेटरी शिरकत न कई त कार्रवाई थींदी। बबरलोई में प्रिया समेत अगवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ लॻल धरणे ते पुलिस कार दौरान गिरफ़्तार कयल केटीएम न्यूज सखर जे रिपोर्टर साहिल जोगी समेत गुम थियल मुज़ाहिरनि जो पतो न पियो। पुलिस साहिल जोगी समेत ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज कंदड़ मुज़ाहिरनि जी गिरफ़्तारी ज़ाहिर न कई। बबरलोई में पुलिस एहतजाज कंदड़ मुज़ाहिरनि खे रात तशद जो निशानो बणाइण बाद गुम करे छडि॒यो आहे। हैदराबाद में धरणे तां गिरफ़्तार कयल शहरनि खे पुलिस आज़ाद करे छडि॒यो। बबरलोई धरणे ते पुलिस चढ़ाई ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि ऐं वकीलनि जो एहतजाज। खैरपुर, लाड़काणो, मेहण ऐं कोटड़ी में वकीलनि एहतजाज कयो। राधण में सियासी समाजी धुरियुनि ऐं शहरी रैली कढी धरणो हयो। कनकोट में एसटीपी कारकुन जो मुज़ाहिरो कयो। बबरलोई धरणे जे मुज़ाहिरनि खे आज़ाद करण जो मुतालबो। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तूम में हथियारबंदनि जो हमिलो।
1: जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीएफएम 91.6।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: उनकी तकलीफ
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब लग जाए ना कि आपने ही सॉन्ग प्ले किया है. सुनो सुनो बोलो बोलो. ये रिक्वेस्ट थी, लिसनर की रिक्वेस्ट थी अदा अजीज की. फिर शो में भी जान से आगे ना गुल पोएट्री भी घूम रही है. फिर आके यार की बारिश, मलाल का मौसम क्योंकि बारिश आ रही है हमारे सिटी की जानिब. फिर आके यार की बारिश, मलाल का मौसम हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम. वो एक दुआ जो मेरी नाम मुराद लौट आई, जबान से रूठ गया फिर सवाल का मौसम. बहुत दिनों से मेरे जहन के दरीचों में ठहर गया है तुम्हारे ख्याल का मौसम. जो बेयकी हूँ बहारें उछड़ भी सकती हैं, तो आके देख ले मेरे जवाल का मौसम. मोहब्बत भी तेरी धूप छांव जैसी है, कभी ये हिजर कभी वसाल का मौसम. कोई मिला ही नहीं जिसको सौंपते मौसिन हम अपने ख्वाब की खुशबू ख्याल का मौसम. फिर आके यार की बारिश, मलाल का मौसम हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम.
1: रोग दुश्मन
0: का. मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा. तुम्हें दिलकश बनाया है मेरी साहिर निगाहों ने, मेरे अंदाज से चेहरा तुम्हारा कौन देखेगा. ये कारजार इश्क है अपने पराए एक है, तीर किसने किसको मारा कौन देखेगा. तो बिछड़ेगा तेरे हमराह जाएंगी मेरी आंखें, तुम्हारे आने जाने का नजारा कौन देखेगा. जो आशिक है वो जाएगा अगर सोहनी पुकारेगी, बिपरते तेज दरियाओं का धारा कौन देखेगा. जरा सा फासला होता है मिलने में बिछड़ने में, तेरी खातिर ट्रैफिक का इशारा कौन देखेगा. मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा.

वज़ीर आज़म शेख वासिम जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फोन ते राबतो। सऊदी अरब के बहरी जहाजन से हुसियन के हमलन की सख्त लफ्जन में मुज़म्मत। सऊदी अरब से मुकम्मल एके जो इज़हार। शेख वासिम माफी मार्शल कौम सऊदी क्यादत अवम से गड बीठल है। सऊदी बहरी टैंकर से हमला कें भी सूरत में कबूलत जोगा ना। हमला आलमी कानून की

ईरान खे वाइदो न करण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरान जे होश में अचण ताईं हमलनि में वाधि थींदी रहंदी। मनीला में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ईरान वाज़े तौर ते वाइदे लाइ तयार न आहे। ईरानियुनि होसियुनि खे बि तकरार में शामिल करे छडि॒यो आहे। ॾिसूं था हाणे छा थो थिए। उमीद आहे त होसी हमला रोके छॾींदा। ईरान खे बि पहिरीं जहाज़नि ते हमलनि जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। एशियन पाणे में चीन जी सरगर्मियुनि ते गणती आहे। अमरीका इतिहादनि जी हिमायत जारी रखंदो।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमालु छो नथो करीं?
0: इहा वाक़ई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 बसल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: रक्त से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आप।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर दारा
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप।
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप।
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप। गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: मैं क्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे
1: उड़दन में अमरीकी रेडार सिस्टम हेलीकॉप्टर हैंगर्स के तबाह कर हुआ है। कुवैत में भी अमरीकी फौज के अड्डे ते ड्रोन हमलन के नतीजे में वरी तबाही थी है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदलदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ क्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदलदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदे।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: कलंद जो आवाज़ उदा ना रहो। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: असां रुगो जमहूरियत लाइ वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो आहे। पंजाब में ज़िलाई सतह ते मोटर वेज ठही रहिया आहिनि। सिंध में जायज़ मोटर वे बि नपटो ठाहियो वञे। आज़ाद कश्मीर में पीपीएफ सूरत सां कामयाबी माणी वई। समूरो पंजाब बरसात में बुडल आहे, पर क़ौमी मीडिया कुझु न पई ॾेखारे।

0: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट हले।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: स्पेशल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मैं वोडल आए पर कौमी मीडिया कुछ न पे दिखा रहे।
2: सोलर है बैटरी ते।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, बागमती 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: पहली बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की। बहुत दुख देखे इन्होंने 2 सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: भाई तुम्हारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, वो लड़की उसको नहीं मिलेगी, खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: खाने को तुम्हें तुम्हें धोखे नहीं दूंगे।
1: नहीं निकल सकते इस जिंदगी से कोई काम।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: सिनेमा सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
4: yeah!

0: ये भी तो जुल्म ही हो रहा है। इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इस्तेमाल किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: तुझे बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीजा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर उनके सामने तमाशा बन गई मामा। अच्छा।

0: तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेस्ट हाउस। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर बाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ये खात्मे ताईं फितनतुल ख्वारिज आए फितनतुल हिंदुस्तान खिलाफ कार्रवाई जारी रहा दियो दहशतगर्दन जो टांचो जिते भी हों तबाह कर लागी तो कोशिश अवाम की हिमायत से बलोचिस्तान में जटादार अमन कायम वफाक सूबा भी बलोचिस्तान की समाजी माशी तरक्की लाय कम कर रहा है।

ऐं सफ़री अलाउंस में वार जी मंज़ूरी। मईशत, मौसमियात, मसरी ज़हानत ऐं आबी वसीलनि बाबति चार टास्क फोर्स बि जोड़ियूं वयूं। वॾे वज़ीर मुआद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास दौरान अहम फ़ैसिला। तालिमी बोर्ड जे चेयरमैन जी उमिरि जी हद 50 साल मां वधाए 63 साल कई वई। सिंध सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सिंध असेंबली ऐं गवर्नर हाउस जे मुलाज़िमनि लाइ सिहत इंश्योरेंस वारी सहूलियत में वाधि जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई। वॾे वज़ीर पारां सूबे में गुटको ऐं मावो विकिरो कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी बि हिदायत। वफ़ाक़ी हुकूमत जा इतिहादी न आहियूं, नई मरकज़ी हुकूमत में शामिल आहियूं। पीपल्स पार्टी जी सिंध हुकूमत हक़ीक़ी आहे। अवाम खे ख़बर आहे त केर फॉर्म 47 ते इक़्तदार में आयो आहे। सिंध समाव वारो वज़ीर शर्जील इनाम अहमद चयो आहे त असां रुगो जमहूरियत लाइ फ़ाक़ खे सपोर्ट कयो आहे। पंजाब में ज़िली सतह ते मोटरवे सही रहिया आहिनि, सिंध में जाइज़ मोटरवे बि न पियो ठाहियो वञे। आज़ाद कश्मीर में पीपीएफ सिरियत सां कामयाबी माणी हुई। समूरो पंजाब बरसाति में बुडल आहे, पर क़ौमी मीडिया कुझु न पई ॾेखारे। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तूक में हथियारबंदनि जे हमले में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गार्ड समेत शहीद। जेका बदवासी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं तेज़ करण जो हुकम। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज मुफ़्ती चयो आहे त जजिस मथां हमिलो रियासत मथां हमले बराबरि आहे, दहशतगर्दनि खे कंहिं बि सूरत में माफ़ न कयो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्सेस जे मस्तूंग में कार्रवाई। खिदमत हिन्दुस्तान जा 6 दहशतगर्द मारिजी विया, केतिरा ई गिरफ़्तार। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब दहशतगर्द कार्रवाइयुनि खां पोइ कटकूचा वारे इलाइक़े में ऑपरेशन करे दहशतगर्द जा केतिरा ई ठाक तपा कया विया। गिरफ़्तार थियलनि में दहशतगर्दनि जे सहूलतकार समेत मर्द ऐं औरत वापार पिण शामिल आहिनि। दहशतगर्दनि जे ठाकनि तां वरी मक़दार में हथियार ऐं बारूद मवाद हथ कयो वियो। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रखियूं वेंदियूं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: मोरे पिया पीर से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।